0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में हमने इख्तसारन जज़ीरा अरब के अहवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इरहासात, फिर ज़माने विलादत, फिर वक्त विलादत और उसके बाद ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनफवान शबाब और आपका सफ़र बराए तिजारत शाम और वापसी पर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह मुबारक, और फिर तजदीद काबा, बिनाए काबा में आपकी शिरकत, और उसके बाद रोया सादिका, और फिर वो घड़ी, वो साअत मुबारक और वो अजीम शान वक्त जो बएतबार जाहिर के भी रहमत था और बएतबार बातिन के भी रहमत था कि रमजानुल मुबारक में और गारे हिरा में जबल नूर पे हुदूद हरम में अल्लाह के पैगंबर पर वो अल्लाह का फरिश्ता जो अंबिया और अल्लाह के दरमियान में कासिद है, रसूल है, वो रसूल नूरी है और वो सबसे पहली वही लेकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, और हुजूर पाक ने उन आयात मुबारक को तिलावत करने के बाद आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और आप पर उस वही का, उस सिकले कलाम का और उस लिकाए जिब्रील का जो असर था उसकी वजह से एक इस तरह भी कैफियत थी जिसका आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजहार किया। तकरीबन हमने यहां तक अपने दुरूस में बयान किया, और सबसे पहली बात तो ये समझें कि वही जो है, जब तक वही ना हो उस वक्त तक अल्लाह का नबी नबी नहीं कहलाता। हालांकि फैसला तो अल्लाह तकदीर में कर चुके होते, क्योंकि अल्लाह के इल्म में हर चीज, अल्लाह को पता है कि हमने किस किस को नबूवत देनी है, किसको रसूल बनाना है और किस पैगंबर ने किस जमाने में मबूस होना है, कितना दिन उसने दुनिया में रहना है और कब, ये सब अल्लाह के इल्म है। लेकिन जब उनकी बेसत का जमाना करीब आता है तो जब वही नाजिल होती है तो अब उनको नबूवत मिलती है, यानी वक्त बेसत का ताल्लुक जो है वो वही। अब वही क्या चीज होती है? वही का माना होता है कि किसी कलाम का, किसी कलाम मखफी का बड़े मखफी तरीके

नहीं मान ले आया कि जी मैं तो मानता हूं, एक पानी का गोता लगा। लेकिन अबू जहल इतना इतना शदीद है, इतना जालिम है कि गर्दन कटी हुई है, आखिरी रगे हैं, फिर भी कुफर से बाज नहीं आया और इस्लाम के मुखालफत करने से बाज नहीं आया। अब देखें कि उसने जुल्म और सितम की जो तरीका ईजाद किया है, आज पूरी तारीख आप उठा के देख लें, आज की तारीख में आप भी समझ नहीं सकेंगे कि अबी जहल से पहले भी किसी जालिम ने ऐसे सोचा होगा। बाद में तो लोगों ने बहुत सोचा, क्या कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, क्या कुछ नहीं हुआ कोसुफू में, क्या कुछ नहीं हुआ सर्बिया में, क्या कुछ नहीं हुआ शीशान में मुसलमान बेटियों के साथ, खवातीन के साथ। अबू जहल ने दो ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए, एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में रस्सा बांधा। कभी आपका अकल सोच सकता है तहजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत में ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए, तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा, एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है, जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेजा मारा बीबी समैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा दो हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार से नहीं काटा गया, ऊंटों ने ताकत से चीर, जैसे मुर्गी को पकड़ के आप यूं चीर। लेकिन उस वक्त भी उसकी जबान पे था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जो इस्लाम के रस्ते में शहीद। यानी तहजीब की कोई हद है? हजरत खब्बाब इब्न अरद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे थे, सहाबा ने कहा कि हजरत खब्बाब हमें अपने इब्तदाए इस्लाम की भी कोई बात सुना। हजरत खब्बाब इब्न अरद ने बताया क्या किया, आपने फरफा सौबहू अन ज़हरिही, आपने अपनी पुश्त से कपड़ा उठा लिया। कहा मुझसे क्या पूछते हो, मेरी पुश्त देख लो, मेरी पुश्त पे पूरी इब्तदा इस्लाम की तारीख लिखी हुई है। सहाबा कहते हैं जब हमने आपकी पुश्त को देखा तो उसमें ऐसे गड़े पड़ चुके थे, ऐसे गड़े पड़ चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे गड़े होते हैं और पूरे अंदर तक गड़े पड़े हुए और सियाह। हत्ता के हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सबर न हो सका, मैं रो पड़ा और वल्लाही मारा है तो खुदा की कसम ऐसी पुश्त किसी इंसान की मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा खब्बाब ये क्या है? उसने कहा इस्लाम के लिए जब हम अल्लाह का नाम लेते थे तो जालिम कुफार जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंगारे अंगारे बनाए, अंगारे बनाकर, और अंगारे पता है कैसे बनाए गए हैं? लकड़ी के अंगारे नहीं, उन्होंने पत्थर लेके आग में रखे, पत्थरों को आग में रखा और पत्थर जब आग की शिद्दत से सुर्ख हो गए, अंगारा बन गए पत्थर। जब अंगारा बन गए तो मेरे कपड़े उतार के मेरी टांगों से पकड़कर मुझे उन पत्थरों पे खींचा, और जब मुझे खींचा जाता था तो जहां जहां पत्थर जलता था जला के अंदर गड़े पड़ जाते थे और अंदर से जो मेरी पीप बहती थी उसी से वो अंगारे बुझते थे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता था। और एक दिन आबना के लाल सरकारे दो आलम रहमते दो जहां सैयद मोहम्मद अरबी पिदा हुआ अभी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काबा शरीफ के पास बैठे हैं, यही खब्बाब को मौका मिला हजूर के करीब, वरना तो काबे में कौन आ सकता, करीब

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि

कितने लोग हैं जो इनके माँ बाप बिल्कुल अलिफ जाहिल लेकिन औलादें बड़े बड़े इल्म हासिल कर चुकी। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का निजाम है। अच्छा खुदा की शान देखें कि एक तरफ दुश्मनों का मुकाबला और दूसरी तरफ जो मुआविन, एक मुआविन था मक्के में, वो भी मर गया। कोई एक इम्तिहान तो नहीं आया हजूर पे। और अभी दो तीन महीने गुजरे थे कि सैयदा खदीजा भी फौत हो, तीन महीने या इससे कुछ कम ज्यादा। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मोहसिना इस्लाम, हजूर की सबसे पहली बीवी, हजूर की तमाम औलाद की मां और सबसे बड़ी मोहसिना, जिसने अपना माल अपना सब कुछ जो था वो हजूर पे लुटा दिया, वो भी फौत हो गई। इसीलिए इस साल को अरबी में कहते हैं आमुल हुज्न। ये तो साल ही गम का था भाई, इसलिए इसको आमुल हुज्न, आमुल हज़न से ताबीर किया जाता है कि हर तरफ से गम ही गम। लेकिन अल्लाह के रसूल के पाए इस्तकलाल में कोई लचक, अपनी बात पे कायम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए कि जब तक अबू तालिब जिंदा था तो मक्के के बड़े बड़े सरदार जो थे ना, वो तो हजूर के सामने आके गुस्ताखी करते थे, जैसे अबू जाल था, अबू लहब था, उतबा उतैबा था, वलीद इब्न मुगीरा था, उबैय इब्न खल्फ था, अकबत इब्न अबी मुईद था, ये लोग तो गुस्ताखियां करते थे। लेकिन आम आदमी को जरूरत नहीं होती थी कि हजूर के सामने गुस्ताखी करें। लेकिन जब अबी तालिब फौत हो गए, अब तो फिर हर बंदा शेर हो, अब तो सुफहाए मक्का आम बच्चे भी हजूर जहां से गुजरते थे नऊज बिल्ला गालियां, हजूर जहां से गुजरते पत्थर बरसाते, हजूर जहां से गुजरते रास्ते में कांटे बिछा देते। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मुआमला चूंकि इस हद तक चला गया है तो इसका कोई हल सोचूं, क्यों ना हो कि मैं मक्के से कुछ बाहर निकलूं, कि शायद अल्लाह तबारक व तआला मेरे आवान व अंसार जो है कुछ बाहर से पैदा कर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचकर ताइफ के लिए निकले, चूंकि सबसे करीबी शहर उस वक्त ताइफ था। और आप इसी से अंदाजा करें कि हजूर ने यह सफर जो है पैदल तय कर, आप एक दिन जरा यहां मक्के से पैदल तो ताइफ जाके देखें। वैसे तो हम सब दावेदार हैं ना, मुसलमान हैं और माशाल्लाह हाजी साहिबान हैं और माशाल्लाह आशिके रसूल हैं, और हम तो जी इतने अरसे से मक्के शरीफ में रहते हैं, मदीने शरीफ में रहते हैं, पता नहीं दिल में ख्याल होता है कि हमसे तो अब कौन बड़ा हो सकता है नेकी में, हम तो पहुंचे हुए लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह के आकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, वो समझते हैं कि चंद दिन मक्के में हमने रह लिया, इबादत कर ली, शायद हमारे को मरातिब बुलंद हो गए। अल्लाह के बंदे आप देखें जरा, तसव्वुर तो करें ना, मरातिब तो तब बुलंद होते हैं जब इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी भी तो दो ना। ये क्या हमारा इस्लाम है कि हम अरब अरब एक अरब से ज्यादा की तैदाद में हैं, और बजाय इसके कि काफिर हमसे डरता हम काफिर से डरते हैं, ये इस्लाम। अल्लाह के नबी अकेले हैं, 70 मुसलमान हैं, वो भी खुल के सामने नहीं आ सकता। आपने सोचा कि चलो अल्लाह के दीन को पहुंचाना है तो ताइफ चलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ तशरीफ ले गए तो ताइफ के बिल्कुल शहर के बाहर, यानी गोया कि आप शहर में जब दाखिल हो रहे हैं तो तीन आदमी अब्दी आलैल हबीब और मसूद, ये तीन आदमी वहां बैठे और ये सरदार थे ताइफ के, ये बड़े बड़े रोसा में से थे, बड़े बड़े सरदारों में से थे। उन्होंने जब देखा कि कादिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर आ गए, उनको पता तो नहीं था। हजूर ने फरमाया कि देखो मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, इजाजत है? उन्होंने कहा अहलन, बैठे आप, फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी और कुरान पढ़ा, अल्लाह का कुरान सुनाया, तो वो बदबख्त तो समझ गए कि हाँ ये तो वो मोहम्मद पाक हैं जिसके कुरैश मुखालिफ हैं। तो अब्दी आलैल गुस्से में खड़ा हो गया, कहने लगा वल्लाहि ला उमिनु बिका या मोहम्मद, कहने लगा खुदा की कसम है मैं तुम पे हरगिज़ ईमान नहीं ले आ सकता, तुम कैसे नबी हो। दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, सबने चीखना शुरू कर दिया ला उमिनु बिका, ला उमिनु बिका, ला उसद्दिकु बिकलामिका, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, हम ईमान नहीं ले आते, हम ईमान नहीं ले आते। इतना शोर किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे गम में मजीद इजाफा

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की, कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुकु मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं। यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है, और न कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, का ना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बजा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती हूं। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई, गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्त हारून मा कान अबूक इमरा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि काना रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी मां अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम, कई

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकरमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन थे। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाइदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमानों को भी आपके मुसख़र करने वाले हैं, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहां इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा

0: अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर अब्दना अय्यूब, सारे कुरान में वो कहते हैं खोल के देखो, सारे कुरान पाक का मुताला कर लें कि जहां जहां लफ्ज अब्द आया, इबादना इब्राहिम व इसहाक, अब्दना अय्यूब, और इसी तरह इबादुल मुकरमून, और इसी तरह इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह ने मेरे मदनी को फरमाया अन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह, फरमाया व औहैना इला अब्दिही मा औहा, जहां पूरे कुरान को देख रहे हो कहते हैं कि लफ्ज अब्द का इतलाक तो कभी रूह पे होता ही नहीं, अब्द का इतलाक होता ही रूह माल जसद पे है, तो जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि असरा बे अब्द ही, तो बात खत्म हो गई। यहां हम कैसे समझ रहे हैं कि वो रूह का मेराज है और रूह का इसरा है और ख्वाब है, इसलिए फरमाते हैं कि नहीं, बिल्कुल हजूर सरकार दो आलम रहमत दो जहां आप बेऐन ही बेदारी में जागते हुए बिल्कुल बसलामती होशो हवास तशरीफ ले गए। और दूसरी दलील उनकी यह है कि असरा बे अब्द ही लैलन, हमने सैर कराई अपने अब्द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कब? रात में। तो कहते हैं कि जब ख्वाब की बात हो तो फिर रात की क्या जरूरत है कहने की, ख्वाब तो रात को देखे या दिन को देखे, सोए में देखे रात को देखे, अक्सर औकात ख्वाब होते ही रात में है, तो फिर उसकी जरूरत क्या थी इतनी बड़ी के बात कहने की कि हमने रात में सैर कराई। तो ये दलील है कि कुछ सैर किसी को जागते में कराई जा रही है कि साथ वक्त का तायुन भी किया जा रहा है कि वो सैर दिन में थी कि या रात में थी, वरना अगर ख्वाब की बात होती तो फिर उसके साथ लैलन कहने की कोई जरूरत। दूसरी दलील उनकी ये है। और तीसरी दलील उनकी ये है कि अगर ये ख्वाब था तो फिर मक्के वालों को इतने शोर करने की क्या जरूरत थी, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है दुनिया का आदमी, ख्वाब तो आप भी देखते हैं कि अभी आप हिंदुस्तान में हैं, अभी आप अपने घर में बैठे हुए थे, आप भी ख्वाब देखते हैं हिंदुस्तान में रहते हुए कि यार मैं तो मक्का शरीफ में तवाफ कर रहा हूं, मैं उमरा कर रहा हूं, और मैं सफा मरवा दौड़ रहा हूं, मैं मदीने मुनव्वरा में खड़ा हूं, रियादुल जन्नत में नफले पढ़ रहा हूं, ये तो ख्वाब हर आदमी देख सकता है। ख्वाब में तो वो चाहे एक सेकंड में हिंदुस्तान पहुंच जाए, वापस अपने मुल्क आ जाए, उधर चला जाए, रूह की सैर तो कोई मुश्किल होती नहीं। वो तो कोई इतनी बड़ी उछंबे की बात नहीं थी कि मक्के में काफिर अबू जहल और सारे शोर मचाए, देखो अल्लाह का नबी क्या कहता है और अल्लाह का नबी क्या कहता है। ख्वाब की बात है, ख्वाब हर कोई देखता है, उसमें मुखालफत या उसमें एतराज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो जब काफिर ने इतना मुखालफत की तो मालूम हुआ कि उनको कोई चीज मुश्किल नजर आई, ख्वाब में तो ये चीज मुश्किल होती नहीं, मुश्किल नजर आई कि एक जिंदा इंसान एक महीने का सफर रात में कैसे तय कर लिया, कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए। ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े और जालिम पत्थर मारे, इसीलिए बीवी आयशा ने एक दफा पूछा था कि हजूर आपकी जिंदगी में कुछ सख्त तरीन दिन, आपने फरमाया आयशा वो मेरे लिए सख्त तरीन दिन था जब तेरी ताइफ गया, इतने जालिमों ने पत्थर बरसाए, सुफहाए ताइफ ने, बेवकूफ पागल बच्चों ने शोर किया, और नऊज़ बिल्लाह सब को शितम, लेकिन अल्लाह के नबी एक जगह आके बैठे हैं, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि मेरे मदनी से कह दो अगर बहुत उदास हो, बहुत घबरा गए हो, तो हम तो इस बात पे भी तैयार हैं, अगर हमें कहो तो अभी पहाड़ के फरिश्तों को हुक्म देते हैं और दोनों पहाड़ों को मिला के ताइफ वालों को कुचल के रख देते हैं हमेशा के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा इहदे कौमी फइन्नहुम ला यालमून, कि मेरा अल्लाह मेरी कौम है इन पर अजाब न भेज इनको हिदायत। तो सीरत नबी का पहलू जो है इसी पे आप अंदाजा कर लें कि इतनी तकलीफों के बाद, इतने जुल्म और सितम के बाद, इतने जबर और इकराह के बाद जबान पे एक ही बात है कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ाफ़ा कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, और उसके बाद दुआ है कि अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। एक साहबी ने कहा हुजूर आप दुआ दें, फरमाया बुइस्तु रहमतन, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे अजाब बना के तो नहीं भेजा कि मैं इनके लिए बद्दुआ करूं, चलो मैं इनके लिए दुआ करता हूं, ये मुसलमान नहीं होंगे, हो सकता है इनकी औलादों से कोई मुसलमान हो, इनकी नस्लों से कोई मुसलमान हो। حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: कैसे बैतुल मक़द्दस पहुंच गए? ख्वाब में तो वो भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये ख्वाब होता तो फिर कभी अबू जहल और उसकी बिरादरी हजूर से आके ये तो ना पूछते कि अच्छा हजूर हमें बैतुल मक़द्दस की निशानियां बताओ, हमें आप ये बतलाएं कि रास्ते में आपने हमारा कोई काफिला देखा था? ये ख्वाब वाले से कोई पूछता है? ये तो उसी से पूछा जाता है जो ये कहे कि जनाब मैं आज जद्दे गया था और मैं अभी अभी जद्दे से वापस आ रहा हूं, तो उससे आप पूछेंगे कि भाई रास्ते में मेरी एक गाड़ी खराब थी, वो फलां जगह वो आपने देखी थी? वो कहेगा पता नहीं यार, मैंने शायद देखी थी या मैंने देखी थी, या कहेगा पता नहीं मैंने ख्याल नहीं किया, मैं गुजर गया। जब गया हो आया हो तो पूछेंगे ना। अगर वो कहे मैंने ख्वाब में जिद्दा देखा है तो उससे आप पूछेंगे कि रास्ते में मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो देखी थी आपने? वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, आप रास्ते की बात पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ये ख्वाब होता तो फिर किसी किस्म का आगे शोर ना होता। दो बातें, और तीसरी दलील उनकी ये है, वो कहते हैं कि बीबी आयशा की हदीस जो है, इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि जब भी किसी इमाम का कौल पढ़ें फौरी तौर पर उसके बारे में राय न दिया करें, या तो आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया हो कि आप उस इमाम से भी बड़े हो, फिर तो उसके इल्म पर बहस करें ना। और अगर हम प्राइमरी के तालिबुल इल्म भी न हों और एमए के सवालात हल करने शुरू कर दें तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो जाहिर है। जैसे आजकल माशाल्लाह एक रिवाज हो गया ना, किसी से आप कहें वो कहता जी छोड़ो जी, दीन को हम अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया को नहीं समझते बेचारे। उसमें पूछते हैं अच्छा जितना मैं दुकान कराऊं जरा कोई तरीका तो बताओ, उसमें बेचारे हर वक्त मोहताज हैं सीखने के, लेकिन दीन में माशाल्लाह सबसे ताप। तो बहरहाल वो कहती हैं कि जनाब बात यह है कि समझें कि बीबी आयशा ने जो हदीस बयान फरमाई है, बीबी आयशा सच कहती हैं, और सैयदना मुआविया ने जो हदीस बयान फरमाई वो भी सच कहते हैं, क्योंकि ना बीबी आयशा झूठ बोल सकती है ना सैयदना मुआविया झूठ बोल सकती है, वो भी दोनों सच्चे। क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले ये देखो कि बीबी आयशा की हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैंने अपने बिस्तर से हजूर को जुदा नहीं पाया। तो पहले बीबी आयशा हजूर के घर भी तो आए ना, बीवी तो बने, तभी बिस्तर पे हजूर लेटेंगे ना, तो उसकी शादी भी हुई है हिजरत के बाद और मेराज हुआ हिजरत से पहले। समझ आ रही है बात के नहीं? बीबी आयशा की शादी हुई मदीना मुनव्वरा में और मेरे आका का मेराज है मक्का मुकर्रमा में हिजरत से 1.5 साल पहले। तो बीबी आयशा का ये कहना इसका मतलब है वो किसी और मेराज की बात कर रही है, हजूर को मदीने मुनवरा में भी कोई मेराज हुए हैं रूहानी, जिसके बारे में बीबी आयशा कह रही है कि भाई हजूर का बदन मुबारक तो मेरे बिस्तर पे था, वो सच कह रही है, लेकिन ये कोई और मेराज है, ये मेराज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, ये तो हिजरत से पहले का मेराज है और उस वक्त तो बीबी आयशा बीवी नहीं, तो वो कैसे कह सकती है कि हजूर मेरे बिस्तर पर नहीं थे। और इसी तरह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इस्लाम

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हुजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, दारे अरकम में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, इंदा बेरे जमजम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, और दाखिल अल हतीम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है। कुरान तो एक ऐसी क्या में बात करता है कि जिसके अंदर फिर किसी सोच की, किसी बहस की, किसी अकली मुशगाफियों की बात की जरूरत ही नहीं रहती। पर मैं आज

मुझे प्यास जो लगी तो मेरे सामने तीन बर्तन पेश किए गए, एक में पानी था, एक में शराब थी और एक में दूध था। और कहा गया कि हजूर इन तीन में से जो आपको पसंद हो आप इख्तियार फरमा ले, आप चुन ले, आपके लिए सब ठीक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तरतु लबना, मैंने तो दूध को इख्तियार किया, मैंने कहा मुझे तो दूध दे। तो जिब्रील अलैहि सलाम बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा सबतल फितरत या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मुबारक हो, आपने तो बिल्कुल ऐन फितरत पे जो हक चीज है वो चुनी है। अगर आप शराब ले लेते तो गवत उम्मतों का, आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर आप पानी पसंद करते तो आपकी उम्मत पानी में गर्क हो जाती, और आपने दूध पसंद किया है क्योंकि दूध ही तो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने बंदे के लिए खुद रिदा बनाई, यही तो चीज फितरत है। जैसे हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है उसकी गिजाए फितरत जो है वो दूध है, कि मां के बदन से उसे दूध मिलता है और कोई चीज नहीं मिलती। अगर उससे कोई दुनिया में गिजा और अच्छी होती तो अल्लाह और अच्छी दे दे, अल्लाह के आगे क्या मुश्किल है। जो अल्लाह तबारक व ताला एक औरत के सीने में दूध पैदा कर सकते हैं, एक औरत की छातियों में दूध की नहरें बहा सकते हैं, और वहां देखें वो सिस्टम कितना रखा हुआ है, फिल्टर कैसा होता है कि दुनिया की लाख मशीनरी फिल्टर करे इतना साफ नहीं हो सकता जितना अल्लाह बच्चे के लिए खुद निजाम बनाया हुआ। तो आपने वो बर्तन ले लिया और उसके बाद कहते हैं जिब्रील अलैहि सलाम मुझे लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ दाखिल हुए, और मस्जिद अक्सा मैंने देखा कि वो तो भरी हुई। और बाद रिवायात में ये भी आया है कि वहां अजान दी गई और वही अजान है जो आज मुसलमान दे रहे हैं। ये अजान दरअसल इसरा के जमाने में मस्जिद अक्सा में दी गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, ताकि हुजूर को इस अजान की तालीम दी जाए और आप अपने सहाबा को तालीम दी जा सके। तो ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाते सदका अब्दी सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा सबसे बड़ा मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह काल सदका अब्दी ला माबूद गैरी, मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई ना। अशहदु

और जब आ गई अब तीन डाक बॉर्डर पे, एक मुनज्जम फोर्स पड़ी हो और मुकाबला किनसे है, मदरसों के लड़कों से जो उन्होंने कभी न जंग लड़ी है ना ट्रेनिंग है ना कुछ है, क्या मुकाबला? अब सोचिए क्या मुकाबला। तो उनके जो अमीर थे ना उन लड़कों के, उनने कहा कि भाई जितने उलमा हैं इकट्ठे करो। तो तकरीबन जो हमें सुनाया गया या मालूम हुआ या अखबारों में पढ़ा कि तकरीबन कोई 6000 के करीब उलमा इकट्ठे हुए। उसने कहा कि मुझे ये फतवा दो कि ये जो हमारी जंग होने वाली है और 3 लाख फौज हमारे हमसाए ने हमारे खिलाफ लगा दी है, क्या वो काफिर है शिया? अगर तो काफिर है फिर तो हमें जंग लड़नी है, और अगर वो मुसलमान है तो फिर तो हम उनसे जंग नहीं कर सकते, मुसलमान उसे कैसे लड़ें? फिर तो ये होगा हमारा फैसला कि हम नहीं पहली गोली चलाएंगे और ना हम उनके इलाके में कदम रखेंगे। अगर उन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई और कदम रखा तो हम डिफेंस करेंगे जिसकी हमें शरीयत इजाजत, फिर हम दिफाई जंग तो लड़ेंगे लेकिन किसी मुसलमान के साथ हम लड़ तो नहीं सकते कि इब्तदा करें। इस पे उलमा का बोर्ड बैठा, अल्लाह ने मेहरबानी की, उनको फौरन फैसला करना पड़ा कि जी हम नहीं लड़ते। उनके लिए तो मसला पैदा हो गया ना कि अगर 6000 उलमा मुत्तफिक होकर कुफ्र का फतवा जारी कर दें तो जंग तो अपनी जगह रही, हम तो वैसे जंग हार गए, और अगर वो कुफर का फतवा जारी न करें तो वो कहते हैं हम तो लड़ते नहीं, हम तो मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ कौन लड़ सकता है। तो एक सुन्नत पर अमल करने का जो अल्लाह के नबी का हुक्म है उसका कितना बेहतर हुई कि दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जरा थम गए, और अल्लाह पाक करे कि दोनों को अल्लाह इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम इस लड़ाइयों के झगड़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, उम्मत इस्लाम को अभी इतना वक्त नहीं फुर्सत। तो खैर ये सारे इंतजामात करने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले तो काफिर आपके घर के बाहर खड़े थे, हजूर पाक ने मिट्टी ली, सूरत यासीन की आयत मुबारक पढ़ी,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहन तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम भी जल्दी जल्दी दौड़ी और उसका क्या बात है, क्यों रो रहा है बच्चा ये? अब ये बता भी नहीं सकती बेचारी, डर के मारे कि मेरा भाई है तो क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा दूध नहीं पीता, देखो उस औरत का दूध दिया नहीं पीता, उसका दिया नहीं पीता, उसका दिया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, भाइयों, साथियों, हमने अपने सिलसिले दर्स में, जैसे आपको मालूम है कि सीरत नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से और उसके रहम व करम से, इनायत से, हमने सीरत मुबारक के इब्तदा से लेकर तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का फरमाना, सरजमीन मक्का मुकर्रमा से हिजरत और मदीने मुनव्वरा के वुरूद तक का बयान तकरीबन इख्तसार से हम कर चुके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में पहुंच गए तो मेरे मदनी की जिंदगी, मदनी जिंदगी, इस्लाम की रफ़त, सरबुलंदी, इस्लाम की अजमत, तकमील, यानी जिस दीन की इब्तदा मक्के से हुई थी उसकी तकमील मदीना में। मक्की जिंदगी में जो हुजूर का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल गुजरे हैं, उस 13 साला दौर में कोई अहकाम, कोई शरीयत के बारे में अवामिर, नवाही, अहकाम, हुदूद, या आसान मसाइल समझ लें, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये कोई हुक्म नहीं उतरा। 13 साला जिंदगी जो है वो सिर्फ दा

0: आह जाती।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: तो हजरत अली बड़े खुश होने गए, अल्लाह इससे बड़ी भी कोई सआदत हो सकती है कि मुझे अल्लाह का नबी अपना भाई बना ले। अब देखें अंसार का कबाल और कुर्बानी और ईसार कह देना तो बड़ा आसान है। ये जज्बा, ये चीजें इस्लाम का सबक थी। अफसोस, सद अफसोस कि आज ये तमाम चीजें गैर कौमों ने अपना ली, हमारी सारी अच्छाइयां उन्होंने ले ली और अपनी सारी बुराइयां हमारे खाते में डाल। सहाबी जो भाई बने ना जी, वो अपने भाई मुहाजिर को लेके घर गया, उसने कहा देखो मेरा भाई, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया। हम जो मां के पेट से पैदा होते हैं ना, वो तो सिर्फ यही है ना कि मां कहती है कि तुम भाई हो, बाप कहता है तुम भाई हो, पता नहीं औरत है खयानत की हो, अल्लाह आलम क्या पता हो सकता है। लेकिन तुम्हारे भाई होने में तो कोई शुभ हो नहीं कि तुम्हें तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए देखो मेरा घर है, इसको दो कमरे, एक तुम्हारा एक मेरा, अगर दो कमरे नहीं ऐसे घर है तो इसको तकसीम कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। मेरा बाग है, उसमें 100 खजूरे हैं, 50 तुम्हारी 50 मेरी। भाई जो सिर्फ कह देना तो आसान है ना किसी को भाई। वो एक लतीफा है ना शोरिश कश्मीरी, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत करे, बहुत बड़ा मुकर्रर भी था, खतीब भी था, अदीब भी था और बहुत बड़ा मुजाहिद भी था। तकरीबन 11 साल उसने अंग्रेजों की जेल काटी। तो वो एक दफा भुट्टो साहब से झगड़ा हुआ तो बाद में सुलह हो गई, कुछ लोगों ने दरमियान में पढ़ के सुलह करा दी। तो भुट्टो साहब उसके पास आ गए उसके घर में, और उसकी ये कमजोरी थी शोरिश की कि कोई आदमी उसके घर पे चल के आ जाए तो बस बात खत्म, फिर सारे झगड़े बगड़े। तो भुट्टो साहब आ गए, भुट्टो साहब किसी ने बता दिया कि भाई ये बड़ा जिद्दी आदमी है, माना तो ये अंग्रेजों की जेल से भी नहीं, तो तुम्हारी सख्तियों से कब मान जाएगा ये, इसका एक ही कमजोरी है इसके घर चले जाओ बस खलास सलाम वालेकुम, उसके बाद ये तुम्हारी मुखालफत छोड़ देगा। वो चुप करके घर आ गया सुलह। जब सुलह हो गई तो भुट्टो साहब ने हंसते हुए कहा कि शोरिश साहब आज के बाद आप मुझे अपना भाई समझें, आप मुझे एज ए PM बात ना किया करें, मुझे PM समझ के आप फोन ना किया करें, बल्कि आप मुझे अपना भाई समझें। तो शोरिश ने फौरन कहा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप यूसुफ के भाई ना। उनने कहा डर है मुझे, यूसुफ के भी तो भाई थे ना जिन्हें कुएं में डाला था। तो उन्होंने कहा भाई तो आप बन रहे हैं, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा बहरहाल फिर भी कि आप मेरे वो यूसुफ वाले भाई तो नहीं है। तो बाहर सूरत कहने का मकसद यह था कि भाई का लफ्ज कह देना तो बहुत आसान, लेकिन उस पर अमलन प्रैक्टिकल तौर पे अमल करना कि भाई बन के दिखाना। उन्होंने कहा ये अच्छा, इतना इससे बड़ा कमाल ये है, एक साहब दिखाओ। उसने कहा देखो भाई मेरी दो बीवियां हैं, तुम मेरे भाई हो, तो मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूं, लेकिन तुम इन दो को पहले देख लो इनमें से तुझे कौन सी पसंद है, जो तुझे पसंद हो मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाए तुम शादी कर लो। ये अंसार का कमाल था। और आगे भी तो फिर मुहाजरीन थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे ना, हमारी तरह होते तो कहते यार बड़ी अच्छी बात है, ठीक है आदमी खुद अपनी बीवी देना चाहता तो क्या आ जाए, खुशी से ही दे रहा है ना, हमें तो कोई ना भी दे तो देख लेते हैं, वो तो वैसे देने पर राजी हुआ हुआ है, हम तो वैसे भी तलाकें ले लेते हैं, तावीज कर लेते हैं, सहर कर लेते हैं, जादू कर लेते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा तकरीरों में भी कहा करता हूं कि अपने घर में कभी पीर या मौलवी को मेहमान न रखा करो और हर आदमी को रख लिया करो, इन दो लोगों से जरूर बचा करो। कई लोग मुझसे नाराज हैं, वो कहते हैं ये आप मौलवियों की तौहीन करते हैं, तौहीन समझें कुछ समझें। एक तो मौलवियों को आदत होती है मुताला करने की, किताबें पढ़ने की, स्टडी बड़ी करते हैं, मतन देखा, हाशिया देखा, शरा देखी, एक एक लफ्ज देखा। इसी तरह इनको पाऊं भी किसी औरत का नजर आ जाए तो ये सर तक पहुंच जाए, ये मुताला शुरू कर देते, आदत होती। और दूसरी बात ये होती है कि ये गरीब भूखे होते हैं, ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ تو بھوکھے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی۔ ایک گناہگار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا۔ تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریو بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسا فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی لسوک، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے۔ تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے، میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب ابن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے۔ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو وہ صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو اہم عبادات جو صلہ ہیں بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنی منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی۔ پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد، تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की इनायत व करम से हम फजाइल सहाबा, मनाकिब सहाबा और असहाबे रसूल के खिलाफ जो मताइन हैं उनके जवाबात बज़िमन खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दुरूस में अल्लाह की तौफीक से बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और चूंकि खुलफाए राशिदीन की अजमत का बयान और खुलफाए राशिदीन की फजीलत का बयान तब ही समझ आएगा जब पहले मकाम सहाबा समझ आए। अगर खुदा ना खास्ता मकाम सहाबा ही समझ ना आए तो फिर किसी खलीफा राशिद के बारे में समझने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी मिसाल यूं समझ लें कि मसलन अगर आप इब्तदाई जमात ही ना पढ़ें, पहली जमात ही ना पढ़ें, तो फिर दूसरी जमात पढ़ने का

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सबसे पहले हुजूर की खिदमत में जाके रिक्वेस्ट की जाए कि हजूर मेहरबानी फरमाए, इफ्तिताह तो आप कर दें, पहली पहली नमाज मेहरबानी करके आप पढ़ा दें, आपके कदम मुबारक आ जाएंगे तो हमारी तो सुभान अल्लाह ईद हो जाएगी। हजूर ने भी कह दी ठीक है, मस्जिद जो बना रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को देखो ना जी, ये हमारे बाल फिरा के बादरा कह देते हैं ना जी, सहाबा नऊज़ु बिल्लाह मुनाफिक हो गए थे, पैसे के लिए साथ लगे हुए थे, इक्तदार के लिए साथ लगे हुए थे, हजूर पाक को आपकी इताअत नहीं फरमाते थे। अब देखिए एक वाकया हुआ है तो क्या अल्लाह ने अपने नबी पे खोल दिया कि उसको रात रहने दिया कि वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीकन बैनल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरा मदनी, जिन लोगों ने ये मस्जिद इदरार बनाई है ना, ये अल्लाह के साथ कुफर करने वाले मुसलमानों को लड़ाने के लिए तो मरकज बनाया है उन्होंने। और अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत कर दी कि मेरा महबूब इनकी मस्जिद में कभी कदम न रखना। मेरे महबूब ये तो मुनाफिक है, ये तो मस्जिद इदरार है, ये तो जाहिरी कल में पढ़ने वाले लोग हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बनवा दिया कि वाला या हलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ये कसमें खाती हैं कि मेरा महबूब हमारा मकसद नेकी है।

0: का इमाम क्यों ना बना ले। तो साहब ने कहा कि ठीक है। इसलिए मेरे मकसद ये सारी तमहीद का ये था कि असहाबे रसूल के लिए, खुलफा के लिए जहां ये शरायत हैं कि मोमिन हूं, जहां ये शरायत हैं कि मुबशर बिल जन्ना हो, जहां ये शरायत हैं कि वो मुहाजरीन में हूं, जहां ये शरायत हैं कि वो कुरैश में हूं, जहां ये शरायत है कि वो इन आयात के उतरते वक्त ईमान के साथ मौजूद हूं, जहां ये शरायत है कि लकद रदी अल्लाह अनिल मोमिनीन की सिफात से मुत्तसिफ हूं, वहां ये सारे इशारात हमें मिलते हैं कि उस खिलाफत राशिदा और खिलाफत नबुव्वत के अगर हकदार थे तो असहाबे रसूल थे, और उनकी यही तरतीब थी जो अल्लाह को भी पसंद थी और मेरे महबूब को भी पसंद थी और क़यामत तक उम्मत को पसंद है, अबू बकर व उमर, उस्मान व अली। और यही अकीदा है अहले सुन्नत का। अगर इसी तरतीब पर ईमान न हो तो गोया वो अकीदा अहले सुन्नत से खारिज हो रहा। यानी इसी तरह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल उम्मत कौन होगा? अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन। वल्लाहु तआला आलम व इल्मुहु अतम। اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।